क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to 97.1

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
7: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
6: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
7: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
6: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
7: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
6: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
7: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
6: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
7: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: To stay contact 07440016816 address 35 Lenton Boulevard, Lenton, Nottingham, NG72ET.
7: Peshawari Dera.
8: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस।
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming.
4: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
5: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए. गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड, नॉटिंघम, या अभी रब्ता करें 0759315066. मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
8: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932.
9: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
2: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
2: थक गया सुनिए नहीं सुन के तेरे लारियां नो
1: जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

सो सबसे पहले लिसनर्स, आपको हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर जो कि है 0115710097 इस नंबर को कर लेना है सेव। सेव करने के बाद इस नंबर पे जाके आपने अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, आप लिख कर भेज सकते हैं। और विल हमारी पूरी कोशिश तो यही होती है कि डीवा डायलॉग में हम वो तमाम सारी चीज़ें शामिल करें जो कि हमारे लिसनर्स सुना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप ना सिर्फ हमें ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, बल्कि आप हमें ये भी बता सकते हैं कि शो में आपको किस तरह के ट्रैक्स पसंद हैं, किस तरह के कलाम पसंद हैं, या फिर आप अपने किसी चाहने वाले को, किसी प्यारे को कोई भी अच्छा सा गाना कर सकते हैं डेडिकेट। इसके अलावा आज के दिन के हवाले से या ओवरऑल आप अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेकर हैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हम हैं यहाँ आपके साथ, हम देंगे आपको एक अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस।

सो हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की आपको अच्छी अच्छी एडवाइजेज सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिलेंगी। सो आपने कहीं और नहीं जाना, सिंपली हमारे पास आना है और हमसे शेयर करना है कि इस वक्त आपके बारे में क्या चल रहा है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत कर रही हैं। होता है समटाइम्स इंसान के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, कुछ आम जिंदगी को लेकर, कुछ अपने हालात को लेकर, कुछ लोगों के रवैयों को लेकर, और साथ ही साथ कभी कभी सक्सेसफुल होने का स्ट्रेस, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की रेस, और ये तमाम तर चीज़ें और तमाम तर बातें होता है ना कि हमें थोड़ा थोड़ा बॉदर कर रही होती हैं। सो एट दैट मोमेंट हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान हो हम सबकी लाइफ में जो कि हमसे क्वेश्चन ना करे, बल्कि हमें दे अच्छी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस, या फिर वो बने हमारा मॉरल सपोर्ट। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है या फिर है किसी ऐसे की कमी, तो डोंट वरी, हम हैं ना, क्योंकि हम आपको देंगे अच्छी अच्छी सी पीस ऑफ एडवाइस। सो इसी तरह से प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें और हमें बताते रहें। सब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप हमें यानी कि डीवा डायलॉग को ट्यून कर सकते हैं। सो सिंपली आपको जाना होगा www.radiofaza.com.uk। इट्स अवर ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ना सिर्फ हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं हमारी इस फैमिली का हिस्सा। सो आप अपने दिन को खुशगवार बना सकते हैं हमारी सुरीली सुरीली आवाज़ों को ट्यून करके, और साथ ही साथ आपको अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए रेडियो फजा 97.1 FM से रिलेटेड, या फिर किसी भी हवाले से कि आपका पसंदीदा जो कौन से दिन के शो में है आने वाला, या फिर तमाम तर आने वाले लेटेस्ट शोज़ की अपडेट। सो वो तमाम तरह अपडेट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेंगी। तो आप इस वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन जो कि है रेडियो फजा 97.1 FM, इसे भी बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सिंपली देर मत कीजिए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रिकॉशियस। सो जल्दी से जाइए और हमारी एप्लीकेशन को कर लीजिए इंस्टॉल, और ये वो तमाम तरह तरीके थे जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो मैंने बारी बारी करके एक एक करके आपसे तमाम डिस्कस कर लिए। अब क्या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। वेल लिसनर्स, बकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो यही है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, कहीं ना कहीं जहां कहीं पर भी होंगे अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे और अपने इस खूबसूरत से दिन का आगाज कर चुके होंगे, और यकीनन इस वक्त आपके हाथ में होगा एक चाय का मग या फिर एक अदद कॉफ़ी का मग। तो सबसे पहले हमारे तमाम तर वो लिसनर जो कि हमें पाकिस्तान से ट्यून करते हैं, सो आज पाकिस्तान में मनाया जा रहा है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो उन तमाम द लिसनर्स के लिए जो कि इस वक्त हमें दुनिया में कहीं से भी ट्यून कर रहे हैं जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान से, क्योंकि बेसिकली मैं भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हम भी वहीं रहा करते थे। सो मेरे लिए उन सब के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग वट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इज दिस, लेकिन फॉर मी इंडिपेंडेंस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि ये उन लोगों से पूछें, उन कौमों से पूछें जिनके पास आज भी खुद मुख्तारी नहीं है, आज़ादी नहीं है खुद के फैसले करने की, खुद अपनी मर्जी से चलने की, उन्हीं को ही कदर होती है इस चीज़ की कि इंडिपेंडेंस क्या होती है। भले हम जैसे लोग जो एक बहुत ही अच्छी वेल नोन सोसाइटी में रहते हैं जहां हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हैं, तो हमें इस चीज़ का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कदर कीमत होती है। सो मैं तो यही कहूँगी अपने उन तमाम से लिसनर से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आज हमें ट्यून कर रहे हैं, कि इंडिपेंडेंस को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लें, क्योंकि ये वो चीज़ है जो किसी को भी आसानी से नहीं मिलती। एंड आई नो कि आप सभी को लगता है कि वाओ हमें ये बहुत ईजीली मिल गया, सुनो ये हमें बिल्कुल भी ईजीली नहीं मिली, इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की और बहुत सारे लोगों की अनथक मेहनत और कोशिश मौजूद है, जिसके नतीजे में कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान बिलोंग कर रहा है, पाकिस्तान का एक नाम है और लोग
پاکستان کو ایز آزاد نیشن جانتے ہیں۔

है सर, साथ ही साथ बताते चलती हूँ आज के दिन के हवाले से। जैसा कि है आज फ्राइडे और आपको मालूम है कि फ्राइडे के दिन अमूमन हमारा पैटर्न आम दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आम दिनों में हम बात करते हैं म्यूजिक की, एंटरटेनमेंट की, लेकिन फ्राइडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ हम दीवा डायलॉग में बात करते हैं उस एक खास मकसद की, उस एक टॉपिक की, जिसकी वजह से आप में हम सब इस दुनिया में आए हैं और हमने वापस वहीं लौट कर जाना है। आई नो थ्रू आउट द होल वीक मंडे से लेकर थर्सडे तक वी ऑल आर रियली बिजी इन अवर लाइफ, जिसकी वजह से हमारा कभी भी ध्यान इस चीज़ की तरफ नहीं रहता, हम आगे पीछे मगन हो जाते हैं। लेकिन फ्राइडे जैसे ही आता है तो फ्राइडे इज़ लाइक अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस कि अब हमने अपनी ज़िंदगी में उस मोड पर वापस से लौट आना है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, या फिर हमारा इस दुनिया में आने का आखिर मकसद क्या है। वेल, ये क्वेश्चंस तो आपके, मेरे, हम सभी के माइंड में आता है कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है। सो इस मकसद को ही हम आज याद करेंगे आज के दिन में, आज के शो में, और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, आपने कहीं नहीं जाना, बल्कि इन दो घंटों को आपने हमें वक्फ करना है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम तरह सुनने वालों को, और आप दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने से हमें सुन रहे हैं, एक बार खुशामदीद कहती हूँ दीवार डायलॉग में। लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने इस बाकायदा से दिन का आगाज़ कर लिया होगा। सो जी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज के दिन के हवाले से, जैसे कि हमने एक प्यारा सा नगमा सुना, तो क्यों ना साथ ही साथ अब हम सुनते हैं एक खूबसूरत सा कलाम। सो आप सभी के लिए एक प्यारा सा कलाम प्ले करती चलती हूँ। ये कलाम है आपदा परवीन साहिबा की खूबसूरत सी आवाज़ में। तो जी, सुनकर बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा कलाम कैसा लगा, और फिर यहीं से आगे बढ़ाएंगे अपने इस शो को, क्योंकि अब से लेके ठीक 2 घंटे तक हम और आप तो रहने वाले हैं साथ साथ। सो गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा।

फिक्स नहीं होती। और अगर हम सोचते हैं कि कुछ टाइम बाद हमारे पास फ्री टाइम होगा, बस फिर हम इबादत ही इबादत करेंगे उम्र के एक हिस्से में पहुंच कर, तो आई थिंक सो कि इस तरह मुमकिन नहीं है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको उस आने वाले कल की फिक्र ना रहे, तो अपने आज से ही खुद को तब्दील करना शुरू कीजिए।

किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने असल मकसद की तरफ वापस लौट कर जा सकते हैं, उसके लिए हमें, जैसा कि फ्राइडे एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा रिमाइंडर है, फ्राइडे हमें रिमाइंड करवाता है कि पूरा वीक हमने दुनिया को वक्त दिया, दुनिया के काम काज किए, बहुत मेहनत की अपने करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फैमिली को लेकर एंड फ्रेंड्स को लेकर। हम हर चीज़ के लिए सोचते हैं कि हमारी फैमिली को हमारे वक्त की ज़रूरत है, हमारे फ्रेंड्स को हमारे वक्त की ज़रूरत है और हमारे अच्छे बेहतर मुस्तकबिल को, लेकिन हम जिस चीज़ को स्किप कर देते हैं वो ये है कि हमारे गॉड के साथ कनेक्शन। जैसे कि हमें दुनिया की तमाम चीज़ों को वक्त देना है, इसी तरह हमें उस हस्ती उस ज़ात को भी वक्त देने की ज़रूरत है जिसने हमें इस दुनिया में लाया है, हमें इस काबिल बनाया है कि आज हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग दुनिया के शोरगुल में इस कदर मगन हो चुके हैं कि हम अपने ऐसे मकसद को भूल चुके हैं। आज का दिन हमने उस मकसद को याद करना है, वापस से अपने गॉड की तरफ लौटना है। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि यू डोंट नीड, क्या बहुत सी इबादत करें या फिर आप दुनिया से कट जाएं और अपने दीगर मामूलाती ज़िंदगी छोड़ दें। आप हर काम करें लेकिन प्रॉपर तरीके से करें, बैलेंस करके करें और एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो जैसे ही आप प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि चीज़ें किस कदर आराम से मैनेज हो जाएंगी और आप अपने दीन और अपनी दुनिया दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। से खूबसूरत सी बात के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक अदद मजीद कलाम को शामिल करने का। हमारी एक प्यारी सी लिसनर्स हैं जिन्होंने हमें फरमाइश की है कि वो चाहती हैं कि हम इस खूबसूरत से कलाम को प्ले करें, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम। कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

तो जब आप आराम से सुकून से बैठकर अपने गॉड से गुफ्तगू करेंगे, आप उनको अपने दिल का हाल सुनाएंगे, या फिर आपकी ज़िंदगी में तो तमाम तरह चीज़ें चल रही हैं, हर्डल्स चल रही हैं, तो यू विल सी के आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से चीज़ें जो आपके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो गई थी वो वापस आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, चीज़ें खूबसूरत हो जाएंगी और प्यारी दिखेंगी।

ऐसे इसी तरह के छोटे छोटे कुछ टिप्स हैं जिनको आपने आज के दिन फॉलो करना है, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपका जो ये कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, और आपको जो एक फीलिंग आती है ना ऑफ काइंड ऑफ गिल्ट के हम तो बस दुनिया के काम काज करते रहते हैं, हम अपने असली मकसद से भटक चुके हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो आपने लाजमी आज एक रेजोल्यूशन बनाना है और अपने इस कनेक्शन को, अपने गॉड के साथ कनेक्शन को मजबूत करना है। वेल लिसनर्स, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो ये तो थी आज के दिन के हवाले से डिस्कशन। अब जहाँ बात करेंगे डिफरेंट पहलू के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि हमारे शो का थीम है कि हम बात करते हैं गर्ली स्टफ एंड ऑल दैट, सो उसके जाने भी बढ़ेंगे, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो फिलहाल के लिए तो हमें इस कमर्शियल ब्रेक की जाने बढ़ना होगा। आपसे मुलाकात होती है कमर्शियल ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के संग जुड़े रहें, बंधे रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। जब तक ये कमर्शियल ब्रेक चलता है तब तक मैं कोशिश यही करूँगी कि आपने जितने भी मुझे टेक्स्ट किए हैं वो तमाम से टेक्स्ट रीड कर लूँ, ताकि जब ब्रेक के बाद हम वापस आएँ तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करें जो कि आप सब सुनना चाहते हैं। सो फिलहाल के लिए लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून विद अस।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गए ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद करती हूँ डीवा डायलॉग में, जो कि है मेरा आपका हम सभी का पसंदीदा शो। और जैसे कि लिसनर्स, आपको और मुझे साथ में हो चुका है तकरीबन एक घंटा के मुकम्मल। सो इस एक घंटा मुकम्मल होने पर आपको एक बार फिर से याद दिलाती चलती हूँ कि 01157100971 ये है आपका और मेरा रابطے का नंबर, यानी ये वो नंबर है जिसके ज़रिए से आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो बिला झिझक कुछ भी जो कुछ आपके दिमाग में या माइंड में इस वक्त चल रहा है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा सा पीस ऑफ एडवाइस दें और साथ ही साथ ये कि आपकी गुफ्तगू को शो का हिस्सा बनाएं।

साथ ही साथ आपको बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वो वेबसाइट है जिसके थ्रू ना सिर्फ आप हमें ट्यून कर सकते हैं बल्कि बन सकते हैं इस फैमिली का हिस्सा। और उन सभी लिसनर्स के लिए जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने दिन का बाकायदा से स्केड्यूल कर लिया है और अब वो अपने स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस की तरफ हैं रवा दवा, सो अगर आप हैं रस्ते में या पहुंच चुके हैं आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब और बनाना चाहते हैं इस सफ़र को या फिर इस डेस्टिनेशन को मज़ीद खूबसूरत, मज़ीद यादगार, सो उसके लिए आप हमें फ़ज़ा डैब के थ्रू ट्यून कर सकते हैं।

स्टार्ट करते हैं डीवा डायलॉग का अगला सेगमेंट। सो अब इसमें बात कर लेते हैं कुछ अच्छे से मोटिवेशनल कोट्स की, कुछ ऐसे कोट्स की जो ना सिर्फ बदल देगी आपके इस दिन को, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी इस जिंदगी में भी मुस्बत असरात मर्तब करेगी।

सबसे पहले याद आप सभी से आज का फर्स्ट कोट शेयर करती हूँ। सो ये कोट हमें आपको मदद देगा इस चीज़ को समझने में कि इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या होती है। सो आवर फर्स्ट कोट सेज, आई एम नो बर्ड एंड नो नेट इन हैंड्स, आई एम अ फ्री ह्यूमन बींग विद एन इंडिपेंडेंट विल। एंड द मोस्ट gorgeous act is still to think for yourself aloud. So, जी हाँ listeners, ये है हमारा आज का first inspirational plus motivational quote. So, this quote simply says कि आपके लिए सबसे ज़िंदगी में खूबसूरत सबसे lucky चीज़ ये होती है कि आप खुद के बारे में सोच सकें बिल्कुल बुलंद आवाज़ में, ना कि आप उस चीज़ को

0: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
1: 97.1 FM

सो वेल लिसनर्स, हमारा आज का जो ये फर्स्ट कोट है कि इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को दिखाता है कि किस तरह से आज़ादी हम सब के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और कहने को तो ये एक लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ के पीछे कितना गहरा मीनिंग छुपा है ये वही समझ सकता है जो इससे महरूम हो। सो आज़ादी का बेसिकली मकसद ये होता है कि एक ओपन फ्री विल जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता, आपको किसी चीज़ के छिन जाने का दुख नहीं होता, अपनों से जुदा होने का दुख नहीं होता, और किसी भी ऐसी चीज़ का दुख नहीं होता कि आपको कोई भी काम दूसरों से छुपाना पड़ेगा या फिर आपको छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। सो हमारे पोइट भी यही कहते हैं कि आज़ादी उनके लिए मतलब कुछ इस तरह से है कि आप खुद के बारे में सोचें, लेकिन एक बुलंद आवाज़ में, एक ऐसी आवाज़ में जहाँ आप दूसरों के सामने वो चीज़ सोच सकते हैं, दूसरों के सामने वो चीज़ कर सकते हैं और आपको किसी भी चीज़ का कोई भी डर नहीं है। और वैसे भी आप दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएं, इंसान को कभी भी अपने रूट्स नहीं भूलने चाहिए। सो जैसा कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और आज हम यहाँ यूके में मौजूद हैं, सो आई थिंक सो कि लाइफ काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है, लेकिन फॉर मी आज भी जैसे तमाम तर वो लोग जो कि उस कंट्री में मौजूद हैं और आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, सो मेरे भी ताज़ुरात और ख्यालात कुछ उन लोगों से मिलते जुलते हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शो के थ्रू आप सभी से अपने इन ख्यालात को या फिर अपने एहसास को शेयर करूं। सो जी, ये था हमारा आज का फर्स्ट कोट। उम्मीद करते हुए इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी और साथ ही साथ आपको इस चीज़ की अहमियत का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि आज़ादी इटसेल्फ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। चलिए आइए आज के दूसरे कोट की जानिब बढ़ते हैं। सो आज का जो हमारा दूसरा कोट है वो फर्स्ट कोट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्लस उसमें भी हम बात करेंगे मोटिवेशन की ही, क्योंकि हमारा मेन पर्पस और इस सेगमेंट का मेन मकसद भी यही होता है कि हम अपने सभी लिसनर्स को कुछ ऐसे मोटिवेशन दें जो कि उनकी ज़िंदगी को बदल सके, ना सिर्फ बदल सके बल्कि उनकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी तब्दीलियाँ लेकर आए।

our second quote says, learn to rest, not to quiet. यानी कि आप इस चीज़ को सीखें कि जब आप बहुत सारा काम कर रहे हों या मुसलसल करते चले जा रहे हों तो आपको ज़रूरत होती है एक ब्रेक की, एक ऐसे ब्रेक की जिसमें आप अपने माइंड को रिफ्रेश करें, जो आप थक चुके हैं थकन को दूर करें, वापस से अपनी ज़िंदगी को उसी मोड से स्टार्ट करने के लिए, ना कि आप उस चीज़ को क्विट कर दें। हम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई नया काम या कोई नया पर्पस मकसद शुरू करते हैं, लेकिन चूँकि जब हम करते करते करते थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कि इट्स आउट ऑफ अवर लीग, सो बस अब इसको छोड़ देते हैं और इस काम को क्विट कर देते हैं। सो हमारा ये कोट हमें ये चीज़ सिखाता है कि आपको कभी भी किसी चीज़ को क्विट नहीं करना। हाँ, अच्छे बुरे हालात आते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट हो जाती हैं, सो आपने बस ये करना है कि आपने एक ब्रेक ले लेना है जिसमें आपने थोड़ा सा रेस्ट करना है, माइंड को रिफ्रेश करना है और फिर वहीं से शुरू करना है जहाँ से आपने उस चीज़ को छोड़ा। शॉर्ट लफ्ज़ों में बोलूँ तो हमारे कोट का सिंपली मतलब यही है कि इफ़ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। सो जब कभी आप थक जाएं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर से दोबारा से रीस्टार्ट कर लें, लेकिन कभी भी अपने मकसद से मत हटें और अपने ड्रीम्स को कभी भी बीच में मत छोड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ड्रीम्स देखते हैं। ड्रीम्स देखना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन ख्वाबों की तकमील तक पहुँचते हैं। सो द लिसनर्स, ये था आज का सेकंड मोटिवेशनल कोट। कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा कोट और इस हवाले से है आपका क्या कहना? सो डू लेट मी नो 0115710097।

सो इसी खूबसूरत सी बात पे मुझे एक और बहुत खूबसूरत सी बात याद आ गई. सो मैंने सोचा कि ये मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो बेसिकली ये लाइन मैंने कल अपनी एक मूवी में देखी थी. जैसा कि मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैंने स्पाइडरमैन स्टार्टिंग से नहीं देखी थी. सो अब रिसेंटली जैसे ही द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज़ हुई, सो मेरी जो फ्रेंड है वो मार्वल सीरीज़ की ह्यूज फैन है. सो शी टोल्ड मी कि इस तरह से मूवी रिलीज़ हुई है तो आओ हम मिलकर देखने चलते हैं या फिर प्लान करते हैं. सो एट दैट मोमेंट मैंने एक भी मूवी नहीं देखी हुई थी. तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, जब तक ये मूवी लगेगी तब तक मैं सब मूवीज़ कंप्लीट कर लूँगी. एंड आई थिंक सो कि मुझे थोड़ा सा थीम पैटर्न ये सब पता चल जाएगा. लेकिन मैंने मूवी स्टार्ट की. सो सबसे पहले तो मैंने द ओजी स्पाइडरमैन 1 देखी, एंड 2 देखी, एंड 3 देखी, जो कि द फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी थी. सो उस मूवी को देखने से मुझे काफ़ी हद तक थीम पता चल गया, पैटर्न पता चल गया कि किस तरह से ये मूवी वर्क करती है. सो बेसिकली मूवी के तीन पार्ट हैं, या कह लो तीन सीरीज हैं. द फर्स्ट सीरीज जिसमें हमें तीन मूवीज देखने को मिलती हैं, स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 एंड स्पाइडरमैन 3. फिर उसके बाद आ जाती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज जिसमें है द फर्स्ट मूवीज एंड द सेकंड मूवी. ठीक है, जो फर्स्ट हमारी सीरीज है उसमें हमें पीटर एंड एमजे की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, जबकि जो दूसरी सीरीज है उसमें हमें पीटर एंड ग्वेन की लव स्टोरी देखने को मिलती है. सो जो कि मैंने कल स्टार्ट की है. सो अभी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो जैसे ही कंप्लीट कर लूँगी आपसे शेयर करूँगी इसका फीडबैक. सो बीच में ही मैंने जाकर द स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख ली थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे साथ साथ काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया था. सो वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी. लेकिन अभी मैं थोड़ी सी पीछे हूँ, तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम तरह इस सीरीज़ को कंप्लीट करती हूँ, फिर बाय बाय करके आपसे शेयर करूँगी कि मुझे द फर्स्ट स्पाइडरमैन अच्छा लगा या फिर सेकेंड एंड या फिर थर्ड. सो मैं बात की कर रही थी कि कल जब मैं मूवी देख रही थी तो मूवी के बीच में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी लाइन सुनी, एंड उस लाइन ने मुझे कुछ इस तरह से हिट किया कि लिटरली मैंने एक से दो मिनट पॉज लेकर सोचा कि वाओ, लाइन तो बेशक एक छोटी सी है लेकिन इटसेल्फ इसका मीनिंग बहुत ही ज़्यादा डीप है. सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर्स के साथ भी इसको शेयर किया जाए. सो हमारे स्पाइडरमैन ने क्या हुक कहा है, इट्स द चॉइसेस दैट मेक अस Who we are. So ये हमारी चॉइस होती है जो हमें बनाती है कि हम क्या हैं. So everybody has a choice, a good person and a bad person. So movie में भी यही दिखाया गया है कि हर इंसान के पास चॉइस होती है कि चाहे वो एक अच्छा इंसान बन जाए या चाहे वो बुरा इंसान बन जाए, चाहे वो एक सेवियर बने या फिर वो एक विलन. सो अगर मूवी का होल सिनेरियो देखा जाए, सो पीटर पार्कर हैज़ अ चॉइस कि वो भी एक विलन बन सकता था, क्योंकि द वे अदर पीपल ट्रीट्स हिम एंड द वे अदर पीपल आर टॉकिंग शिट अबाउट हिम. लेकिन फिर भी उसने क्या चूज़ किया, उसने चूज़ किया सेवियर बनना, दूसरों की हेल्प करना, सोसाइटी के लिए एक अच्छा काम करना. सो उसने साथ ही हमें ये भी बताया कि ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरह से खुद को चेंज कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं. सो बस ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आप सभी से भी शेयर करूँ, क्योंकि इट्स लाइक अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस. तो आप सबके लिए भी एक मोटिवेशन है कि आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं. सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक पॉज बटन यूज कर लेना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, रेस्ट कर लेना है, लेकिन कभी भी अपने उन ड्रीम्स को क्विट नहीं करना. सो ये जो लाइन है ना, ये हमारी सेकेंड कोट से रिलेट कर रही थी, इसमें मैंने सोचा कि दोनों को साथ ही मैं एक्सप्लेन कर दूँ. वेल लिसनर्स, कैसे लगे आपको आज के हमारे ये जो दो मोटिवेशनल से कोट थे प्लस एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ आज का ये सेगमेंट. सो इस हवाले से अगर आपका कुछ भी कहना हो या कोई कोड आपको ना समझ लगा हो या आपके पास भी हो कोई ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल, सो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे. सो ये था हमारा आज का इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सेगमेंट. अब वक्त हो चुका है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं डीवा डायलॉग में इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. सो आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, इसी तरह से हमारे संग जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें. एहसास किस तरह से दिलाना है, 01157100971 इस नंबर के थ्रू और साथ ही साथ www.radiofaza.com.uk और हमारी फजा डैप के थ्रू. सो ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप हमें एहसास दिलाते रहेंगे. सो दिलाते रहा करें, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप हमसे शेयर करते हैं कि आपका हमारे हवाले से या फिर शो के हवाले से है क्या कहना. सो दी लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. सब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डंकन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

सो दे वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद तीवर डायलॉग में, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे ज़ैनब फातिमा। तो लिसनर्स, अब वक्त आ गया है शो के उस सेगमेंट की जाने बढ़ने का जो कि मेरा, आपका, बल्कि हम सभी का है फेवरेट, क्योंकि जहां बात हो खानों की वही एशियन पीपल्स का वो फेवरेट सेगमेंट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो वेल, मैं लवली डिवाज हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए ऐसी ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज जो कि दिखने में बहुत ही डिलिशियस है मगर खाने में है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। सो जी आइए स्टार्ट करते हैं आज का द स्पाइस किचन सेगमेंट।

लिसनर, जैसे कि है फ्राइडे, सो आपको पता है कि फ्राइडे एसोसिएट किया जाता है चावलों से रिलेटेड. सो आज हम एक ऐसी ही राइस रेसिपी बनाएंगे जो कि आई नो आप सभी को बनानी आती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल और फ्यूजन में बनाएंगे ताकि आपको एक अलग सा मुनफरिद सा टेस्ट चखने को मिले. सो आपसे शेयर करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी के फुल इंग्रेडिएंट्स और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम उस रेसिपी को बनाएंगे. लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक अदद खूबसूरत सा कलाम शो में शामिल किया जाए, तो आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा कलाम आतिफ असलम की आवाज़ में. कलाम के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट को.

नमस्ते तो लिसनर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक बिरयानी रेसिपी। सो बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और इंडो अरेबिक फ्यूजन डिश है, जिसमें हम खुशबूदार बिरयानी को एक क्रिस्पी फ्लेकी पेस्ट्री क्रस्ट पैटीज़ के अंदर रैप करके बेक किया करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट एंड

लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 1.5 कप, नींबू का रस 1 से 2 अदद, पिसे हुए मसाले 1 चम्मच, जीरा, धनिया, हल्दी और कड़ी पाउडर। अब अगर हम बात करें साबुत मसाले की, तो 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता और 5 सब्ज़ इलायची। और अगर हम बात करें नमक की, तो नमक हसब ज़रूरत हसब ज़ायका होगा, आप अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं आज अपने टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ, तो मुझे ना ज़रा नमक थोड़ा सा तेज़ पसंद है, मुझे खाने में जब तक नमक का टेस्ट फील ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे फीका फीका सा लगता है। सो मैं इस रेसिपी में ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। अब जरा बात कर लेते हैं मजीद बाकी के इंग्रेडिएंट्स की। सो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बासमती चावल 600 ग्राम्स, साबुत मसाला 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग और 3 इलायची, ज़ाफ़रान का पानी 1 कप, गार्निशिंग के लिए 1.25 कप तली हुई प्याज, पुदीना और हरा धनिया, बटर 2 खाने के चम्मच और यूनिक क्रस्ट के लिए हम पफ पेस्ट्री शीट यूज़ करेंगे 1 पैकेट और अंडे या फिर दूध यूज़ करेंगे फॉर ब्रशिंग। सो वेल लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी इस रेसिपी में शामिल होंगे। सो वन बाय वन मैंने आपसे शेयर कर दिए, आप सब ने नोट तो कर लिए होंगे, लेकिन जस्ट इन केस अगर कुछ आपसे हो गया है मिस, तो डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं, आप 0115710971 इस नंबर पर जाके हमसे पूछ सकते हैं एंड मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूँगी जहाँ से आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी। सो ये थे इंग्रेडिएंट्स, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की जानिब, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को रेडी करेंगे।

सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर वन की जानिब, जिसमें हम गोश्त को रेडी कर लेंगे। सो एक बर्तन में हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और इन्हें तब तक पकाएंगे कि जब तक ये सुनहरी हो जाएं। और जैसे ही रंग सुनहरी हो जाए, याद रखिएगा अपने रंग काला नहीं करना, क्योंकि अगर प्याज का रंग थोड़ा सा गहरा या फिर काला हो जाए तो वो ओवरऑल चावलों के कलर को भी डैमेज करता है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सो जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाए, फिर हम इसमें गोश्त, पिसे हुए मसाले, साबित मसाले, टमाटर, दही और नींबू का रस, ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। ढक धीमी आंच पर गोश्त को गलने देंगे, ठीक है, यहाँ तक कि वो अपनी ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से पक जाए। सो इस स्टेप तक हमारा स्टेप नंबर वन हो जाएगा कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर टू की जानिब, जहां हम चावलों को रेडी करेंगे। सो अब एक अलग बर्तन में पानी, साबित मसाला और नमक शामिल कर लेंगे, ठीक है, साथ ही साथ इसमें चावल शामिल करेंगे और इन्हें 75% तक कुक कर लेंगे, यानी कि तीन कनी जब रह जाए उतनी देर तक आपने अपने चावलों को पका रहना है। सो अब बारी आती है स्टेप नंबर थ्री की, जिसमें हम दम लगाएंगे, ठीक है। सो इस स्टेप में एक भारी सा बर्तन ले लेंगे, ठीक है, जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। पहले गोश्त की ग्रेवी और फिर चावल की तह लगा देंगे, ठीक है, ऊपर से मक्खन, ज़ाफ़रान का पानी, तली हुई प्याज, पुदीना और धनिया, ये तमाम सारे इन्ग्रीडियंट शामिल करेंगे। 20 मिनट के लिए धीमी आँच पर दम लगने देंगे, ठीक है, फिर थोड़ा ठंडा होने पर इसे ओपन करेंगे।

सो अब आ जाती है हमारे उस डिफरेंट और यूनिक फ्यूजन की जो कि हम इस रेसिपी में ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक हमारी ये मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी तैयार है, लेकिन अब हम इसे देंगे एक डिफरेंट इंडो अरेबिक टच, जिस टच के हवाले से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा है फेमस। सो अब हम क्या करेंगे, पफ पेस्ट्री शीट्स को थोड़ा सा बेल लेंगे, ठीक है, फिर एक बाउल में या फिर रामकिन के अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर तैयार की हुई बिरयानी को अच्छी तरह से ऐड करेंगे, पेस्ट्री के किनारों को ऊपर से करके अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि आपकी कोई भी इंग्रेडिएंट बाहर ना आए, वो अच्छी तरह से पैक हो जाए। सो इसी तरह वन बाय वन करके हम तमाम तर शीट्स को रेडी कर लेंगे, ठीक है। फिर इन तमाम तर शीट्स को हम बेकिंग ट्रे पर रखेंगे ताकि स्मूथ साइड हो जाए। ऊपर से अंडे या फिर दूध ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर हल्का सा ब्रश कर लेंगे। फिर प्री हीटेड ओवन 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 से लेकर 20 मिनट तक इसे अच्छे से बेक कर लेंगे ताकि पेस्ट्री हमारी गोल्डन हो जाए प्लस क्रिस्पी भी हो जाए। सो जब आप इसे दरमियान से कट करें, सर्व करें और अंदर से गर्म गर्म खुशबू आ रही हो और क्रंच लेवल भी बरकरार हो, सो इट मीन्स कि आपकी ये रेसिपी लाजवाब है, कमाल है और आपने इसे बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बनाया है। सो वेल लिसनर्स, ये थी हमारी आज की डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी। सो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। हाँ, ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, क्योंकि हो सकता है मोस्टली आपने इस तरह की कोई चीज़ अभी तक ट्राई ना की हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट यूनिक फ्यूजन हम सभी को तैयार ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अभी आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से सर्व करते हैं, चाहे तो आप इसे डिनर में खा सकते हैं या चाहे तो लंच में भी, लेकिन मैं तो ये कहूँगी आप टी ब्रेक में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ चिकन पैटी काइंड ऑफ थिंग। सो आप इसे चाय के साथ भी आराम से खा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। सो लिसनर्स, बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी और इसी तरह की मज़ीद मज़े मज़े की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस फलां चीज़ की रेसिपी चाहिए। तो मैं कोशिश तो पूरी यही करूँगी कि आपको वो तमाम तर रेसिपीज़ प्रोवाइड करूँ जो आपको चाहिए। सो वेल लिसनर्स, इसी के साथ ही मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फ़ातिमा को दे इजाज़त, क्योंकि अब जो डीवा डायलॉग का ये सफ़र अब से लेके ठीक 2 घंटे पहले हमने शुरू किया था, अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। बहुत मज़ा आया आप सबके साथ गपशप करके, डिफरेंट मौजूद पे हमने डिस्कशन की, हर तरह के पहलू के बारे में जाना और आपके भी ख्याल और तसरात को लिया, साथ ही साथ अपनी भी ख्याल आपसे शेयर किए।

सो जी लिसनर्स, जाते जाते एक बार फिर से आप सभी से इतना कहूंगी, यही के शो खत्म हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो कोशिश करिएगा कि आज के इस दिन को मजीद खूबसूरत बनाइए, यादगार बनाइए, अपनों के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करके, अपने गॉड के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करके और मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करके। सो डियर लिसनर्स, मुझे अपनी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और बहुत सारी अनलिमिटेड गॉसिप्स के साथ। सो तब तक के लिए ये खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं और जाते जाते साथ ही आपको मुझे अलविदा करें और मैं आपके लिए कलाम प्ले कर देती हूँ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।

मतलब अपनी टिकट बुक करवाइएगा और इस खूबसूरत से इवेंट का हिस्सा बनिएगा, जहाँ पर बहुत बहुत मज़े की गेम्स भी होंगी और बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी होगी, इंटरटेनमेंट होगा। और उम्मीद करती हूँ कि जब आप उस इवेंट में जाएंगे, आप जब उस इवेंट का हिस्सा बनेंगे, तो आपको वाकई में मज़ा आएगा। मतलब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जब हम सोच लेते हैं कि यार हमने किसी इवेंट में जाना है, तो उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं होती कि यार पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, लेकिन वहाँ पर जाकर जब हमें उस चीज़ का पता चलता है ना, तो वो फिर हमें हमारा वहाँ से वापस आने का दिल नहीं करता। मज़े की बात यह है, और ये इवेंट शुरू होगा शाम 6 बजे से, तो कोशिश ये कीजिएगा कि 6 बजे से पहले पहले जो है ना, अगर आपकी टिकट बुक नहीं ना हुई तो उसको फ़ौरन से बुक करवा लीजिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत से कलाम के साथ। जुमे का दिन, और जुमे के दिन जो है वो कलाम ही प्ले किए जाते हैं, ना कि ट्रैक्स को प्ले किया जाता है। बट मे भी शायद मेरे प्रोग्राम के बाद जो कि ट्रांसमिशन आपके साथ जारी रहेगी, वो अपने प्रोग्राम में आपके लिए ट्रैक प्ले कर देंगे, बट मैं नहीं कर सकती। हमेशा की तरह प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है, तो उस टॉपिक के हवाले से हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। बट उसके हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है वो मुझ तक आप पहुँचा देते हैं, क्योंकि मुझे उस तरह अब ज़रूरी नहीं है कि हर बात का इल्म मुझे ही हो, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसी बातें नहीं पता होती और जो आप मुझ तक पहुँचा देते हैं। सवाल प्रोग्राम का आगाज़ करने के खूबसूरत से कलाम के साथ, इसके उस पार है ये आपसे मुलाकात। ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा। मिलते हैं इस कलाम के उस पार।

0: करोड़ों दिलों की धड़कन,
1: सिर्फ एक ही आवाज,
2: फजान 97.1 FM।

0: जिंदगी। ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
2: थक गया सोनिए नी सुन के तेरे लारियां नू।
1: जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H

0: खुशनुमा सदाओं में, आपकी दुआओं में।
1: जज्बा जब हुआ शामिल, तब हुआ हमें हासिल। सुर संगीत सदा और साज,
0: यही तो है
2: फजा 97.1 FM।

0: खुशनुमा सदाओं में, आपकी दुआओं में।
1: जज्बा जब हुआ शामिल, तब हुआ हमें हासिल। सुर संगीत सदा और साज,
0: यही तो है
2: फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

दो नफर पर और रब तो मान ही जाता है, जाहिर सी बात है। और वो नाराज होता ही नहीं है भाई, अपने बंदों से वो नाराज नहीं होता। एक माँ है जो अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है, और वो ऊपर वाले की जात है जो कभी भी किसी इंसान से नाराज नहीं हुई। नाराज वो नहीं होते, बस हमारे काम कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद को उनसे दूर कर देते हैं। सब कुछ यहाँ पे जो है वो फानी है, ये दुनिया फानी है। जब हमें उसने खुद बताया कि ये दुनिया फानी है, तो तुम इस दुनिया में दिल क्यों लगा रहे हो भाई? अपने काम से काम रखो, जिस काम के लिए इस दुनिया में आया उसको करो और जाओ। यही जिंदगी है, एक दिन मरने के लिए इंसान को इतना जीना पड़ता है।

यहाँ पे तो हम लोग जो है ना, वो अगर कोई चीज़ खरीदनी हो तो पैसे कम है तो थोड़े से पैसे मांग लेते हैं तो फिर उस चीज़ को हम खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर जो है ना, अमाल जो है वो अपने अपने होंगे। हाँ, मे भी मैंने एक वाक्या सुना था कि किसी इंसान ने बोला था कि मेरी ए दो नेकियां का मैं, तो मुझे दो नेकियां दे दो, तुम तो वैसे भी जहन्नम में जा ही रहे हो। तो बड़ी उन्होंने अपनी दो नेकियां दे दी उनको, और रब्बी ज़ात को उस बंदे की वो बात भी पसंद आई कि वो तो चलो जा ही रहा था उस साइड पे, लेकिन उसने जाते जाते इसका काम आसान किया, तो वो फिर उन्होंने दोनों को ही पकड़ के जन्नत में डाल दिया। मतलब आप अपना फ़ायदा अगर नहीं हो रहा तो आप दूसरे का फ़ायदा ज़रूर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी ज़ात से अगर किसी को किसी भी तरह का फ़ायदा हो रहा है तो दैट्स वेरी ग्रेट, और अगर आपकी ज़ात से किसी को नुकसान पहुँच रहा है तो ये बहुत गलत बात है।

सवाल उसी के साथ साथ अब मेरे ख्याल में आपसे इजाज़त मांग लेते हैं, क्योंकि टाइम टोटली ख़त्म हो चुका है तकरीबन, जो है वो हम अपने अहतमाम की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अब मैं यही बोलूँगी कि वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात रहेगी। वीकेंड पे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किसने आना है किसने नहीं आना, तो ये मैं आपसे मंडे के आकर, मंडे वाले दिन आकर डिस्कस जो है करूँगी। लेकिन इस वीकेंड को अच्छे से गुजारिएगा, ना कि मुंह बना के नाराज़ हो के इस चीज़ को जो है ना, इसको थोड़ा अपनी ज़िंदगी से साइड भी कर दें, इस चीज़ को भाई, इस किस्से को अपनी ज़िंदगी से आउट कर दें। भी जो है वो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हमेशा कह के जाती हूँ कि एक बार आने के लिए एक बार जाना तो पड़ेगा, तो आज मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि आगे वीकेंड आ जाना, वीकेंड के बाद ही फिर मुलाकात होनी है। पहले तो ये होता था कि चलो कल मुलाकात हो ही जाएगी, बट अभी जो है वो 2 दिन का गैप पड़ जाएगा। सो खैर कोई बात नहीं, अभी जो है वो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus, and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic, and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner, and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: Mohabbaton mein shumar kaisa, yaqeen kaisa, gumaan kaisa, sawal kaisa, jawab kaisa, aruj kaisa, zawal kaisa. मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा? इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
11: 97.1 FM।

0: करोड़ों दिलों की धड़कन,
1: सिर्फ एक ही आवाज, फजान 97.1 FM।

0: करोड़ों दिलों की धड़कन,
1: सिर्फ एक ही आवाज,
2: फिजा 97.1 FM।

0: खुशनुमा सदाओं में, आपकी दुआओं में।
1: जज्बा जब हुआ शामिल, तब हुआ हमें हासिल। सुर संगीत सदा और साज,
0: यही तो है
2: फजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

ज़रा सोचिए, आज़ादी का मतलब क्या है? क्या आज़ादी सिर्फ यह है कि आज हम सब्ज लिबास पहने? क्या आज़ादी सिर्फ यह है कि हम मोटरसाइकिल पर झंडा लगाएं? क्या आज़ादी सिर्फ यह है कि हम सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दें? नहीं, आज़ादी का असल मतलब यह है अपने मुल्क को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कबूल करना। अगर हम अपने मुल्क की सड़क पर कचरा फेंकते हैं तो सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं, अगर हम रिश्वत देते हैं और सिर्फ निज़ाम ख़राब नहीं, अगर हम झूठ बोलते हैं, मिलावट करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, तो हमें भी अपना किरदार देखना होगा। हम सब पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान हम सब से मिलकर बनता है। आइए प्रोग्राम को मजीद आगे ले जाते हैं और एक खूबसूरत मिली नगमे के साथ सुनते रहिए फजा 97.1 FM।

कुछ नगमे सिर्फ सुने नहीं जाते, कुछ नगमे दिल में उतर जाते हैं। इन्हीं नगमों में से एक नगमा आपकी हसीन समातों की नजर करते हैं, सुनिएगा और सर धुनिएगा।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Pishavri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

पाकिस्तान हमें बहुत कुछ देता है, अब हमारी बारी है कि हम पाकिस्तान को कुछ दें, अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत, अपनी ईमानदारी, अपनी तालीम और अपना किरदार। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, इसे अमन अता फरमाए, इसे तरक्की अता फरमाए, पाकिस्तान के तमाम लोगों को खुशियाँ अता फरमाए और हमारे शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। जश्न आज़ादी के इस खूबसूरत मौका पर ज़रा चंद लम्हों के लिए तारीख के सफ़ात भी पलटते हैं, क्योंकि जिस आज़ादी का जश्न हम आज मना रहे हैं उसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है। यह दास्तान सिर्फ 14 अगस्त 1947 से शुरू नहीं होती, इसके पीछे कई दहाइयों की सियासी, फिक्री और समाजी जद्दोजहद भी मौजूद है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद बर्रसग़ीर के मुसलमानों ने एक नए दौर का सामना किया। मुसलमानों को ये एहसास होने लगा कि बदलते हुए सियासी हालात में उन्हें अपनी शनाख्त, तालीम, हकूक और सियासी मुस्तकबिल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। इसी दौर में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों की तालीमी बेदारी के लिए बड़ी जद्दोजहद की। उनका पैगाम था कि मुसलमान जदीद तालीम हासिल करके अपने आप को मजबूत बनाएँ और बदलते हुए हालात को समझें। फिर आता है वो नाम जिसने मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल को एक नई फिक्री समत दी, उस नाम को जिक्र करते हैं, उनका नाम था अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 1930 के खुतबा इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के शुमाल मगरिब मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को एक सियासी वक्त की सूरत में देखने का तसव्वुर पेश किया। ये तसव्वुर आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान की फिक्री बुनियादों में शामिल हुआ। इकबाल ने सिर्फ एक ज़मीन का ख्वाब नहीं देखा था, उन्होंने एक ऐसी मिल्लत का ख्वाब देखा था जो अपनी तहजीब, अपनी शनाख्त और अपने उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजार सके। और फिर तारीख के मंजरनामे पर एक ऐसी शख्सियत नुमाया होती है जिसने मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद को मुनज़्ज़म क़यादत फराहम की। उस ख़ैर का नाम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जना है। मुस्लिम लीग की क़यादत में क़ायद आज़म ने मुसलमानों के सियासी हकूक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद की। 1940 में लाहौर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास हुआ। इसी मौका पर वो करारदाद मंजूर हुई जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया गया। ये वो मरहला था जब मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद ने एक वाज़ेह समत इख्तियार की। 1940 से 1947 तक का ज़माना तारीख का इंतहाई अहम दौर था। सियासी मुज़ाकरात हुए, इख्तलाफात हुए, बातचीत हुई, मुश्किलात आई, लेकिन तहरीक पाकिस्तान आगे बढ़ती रही और बिलाखिर वो दिन आया जिसका लाखों मुसलमानों को इंतज़ार था। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया। लेकिन सामीन यहाँ एक लम्हे के लिए रुकना ज़रूरी है। पाकिस्तान क़याम सिर्फ जश्न की दास्तान नहीं, ये कुर्बानियों की दास्तान भी है। 1947 में तकसीम के दौरान लाखों लोगों ने हिजरत की। लोग अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपना कारोबार और अपनी यादें छोड़कर नए वतन की तरफ रवाना हुए। कई ख़ानदान बिछड़ गए, बेशुमार लोगों ने जानें गंवाई, माओं ने अपने बेटे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, बच्चों ने अपने वालिदैन खोए। यह आज़ादी हमें एक बहुत बड़ी कीमत के बाद मिली है, इसीलिए आज हम सबसे हिलाली परचम को देखते हैं तो हमें सिर्फ इसके रंग नहीं देखने चाहिए, हमें इस परचम के पीछे छुपी कुर्बानियों को भी याद करना चाहिए। क़ायद आज़म ने पाकिस्तान के क़याम के बाद एक ऐसी रियासत का तसव्वुर पेश किया जिसमें कानून की हुक्मरानी, अकलियतों के हुकूक, इंसाफ और शहरी जिम्मेदारियों को अहमियत हासिल हो। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से उन्होंने एक नए मुल्क की बुनियाद रखने का मुश्किल तरीन मरहला देखा। नया मुल्क था, वसाइल महदूद थे, लाखों महाजरीन की आबादकारी का मसला था, इंतजामी मुश्किलात थी, लेकिन कौम ने हिम्मत नहीं हारी और आज 79वीं साल बाद जब हम 2026 में जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हमें खुद से एक सवाल ज़रूर करना चाहिए। क्या हमने अपने बुज़ुर्गों के ख्वाब को समझा है? क्या हम तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम कानून की पासदारी करते हैं? क्या हम अपने मुल्क को साफ रखते हैं? क्या हम ईमानदारी से काम करते हैं? क्या हम अपने इख्तलाफात को बर्दाश्त करते हैं? और क्या हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख सिर्फ माज़ी की किताब नहीं, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है। तो आइए तारीख के इन सफहात को याद करते हुए अब सुनते हैं एक खूबसूरत मिल्ली नगमा। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि इस धरती को अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। सुनिएगा

फजा 97.1 FM पे आप सुन रहे हैं सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। सुनिएगा और सर धुनिएगा और दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान को आबाद रखे।

0: 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हालात आसान नहीं थे। नया मुल्क था, वसाइल महदूद थे, इंतज़ामी ढांचा नया था। पाकिस्तान को बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की गई। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम आगाह करेंगे आपको। सुनते रहिए फजा 97.1 FM।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, रायया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें रायया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, रायया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। रायया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We

0: are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
1: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

0: हम तारीख के सफर में 1947 तक पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान बन जाना इस दास्तान का इख्तिताम नहीं था। हकीकत में तो ये एक नए सफर का आगाज था, एक ऐसा सफर जिसमें एक नई कौम को अपने मुल्क को संभालना था, नए इदारे बनाने थे, लाखों मुहाजरीन को आबाद करना था, माइश तो खड़ा करना था और दुनिया को साबित करना था कि पाकिस्तान सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हालात आसान नहीं थे। नया मुल्क था, वसाइल महदूद थे, इंतज़ामी ढांचा नया था और नहायत कमज़ोर था। लाखों मुहाजरीन पाकिस्तान आबाद हुए, लोगों को रिहाइश चाहिए थी, रोज़गार चाहिए था, खाना चाहिए था, एक महफूज मुस्तकबिल चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हिम्मत नहीं हारी। किसी ने दफ्तर संभाला, लोगों ने अपने हाथों से मुल्क बनाना शुरू किया, किसी ने स्कूल कायम किया, किसी ने कारोबार शुरू किया और किसी ने बच्चों को तालीम दी और यूँ पाकिस्तान आगे बढ़ने लगा।
1: रख लूं मैं खाक तेरी अपनी जबीं पे।
0: पाकिस्तान के क़याम के बाद क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंतहाई मुश्किल हालात में नई रियासत के लिए मेहनत की, लेकिन उनकी सेहत मुसलसल ख़राब होती रही और 11 सितंबर 1948 को कौम अपने अजीम क़ायद से महरूम हो गई। लेकिन उनका पैगाम आज भी हमारे सामने है। पैगाम क्या था? इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये कौम की तामीर का उसूल था।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए.
8: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया.
7: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन.
8: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो.
7: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी. अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL. अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए. जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम. बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779. एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन. हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस. बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA. Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS.
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट.
10: टेस्ट भी, वाइब भी.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
12: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
14: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.
1: ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 077152।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Haza 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
7: Attention!
8: Property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
9: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
10: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
9: सलासा ट्यूशन सेंटर?
10: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
9: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
10: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
9: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
11: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
12: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
13: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़।
14: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972 ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्डन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1 FM.